लाली खट्टू मिया पैसा लाए ना, लाले को ये डर पैसा कोई खाए ना, अरे बुढ़े को फिकर बुढ़ी भाग जाए ना। जख्मी जिगर है डर है फिकर है सब गड़बड़ है निकले है दम खोते आला की कसम। भाई भाई भाई जख्मी जिगर है डर है फिकर है सब गड़बड़ है निकले है दम खोते आला की कसम। कहीं ज्यादा कहीं कम, कहीं ज्यादा कहीं कम, हर्रम तर्रम दुनिया के कैसे कैसे हम, कहीं ज्यादा कहीं कम।

तेरी मंजिल की, वो तेरी मंजिल की तस्वीर बन जाऊंगी। मंजिल का साथ है, मिलने की याद है, तू क्यों उदास है।

प्यारी प्यारी अगन मीठी मीठी चुभन प्यारी प्यारी तड़पती हूँ मैं आरज़ूए छुपाए तड़पती हूँ मैं आरज़ूए छुपाए।

जब जब तक है तेरी भरी तेरे पहलू में नीलम परी, जब जिस दिन भी खाली हुई जान रह जाएगी।

चल मेरे दिल चले हम वहाँ, पैसे का लफड़ा जहाँ। ये तो दुनिया है व्यापार की, इसमें अपना ठिकाना कहाँ। पछताना ना

मेरा तेरा मेरा तेरा तेरा मेरा तेरा मेरा मेरा तेरा था घटा बरस जा पवन ओ झूम जा।

मेरा मेरा मेरा मेरा मेरा मेरा मेरा मेरा मेरा मेरा मेरा मेरा मेरा मेरा मेरा मेरा मेरा मेरा मेरा मेरा मेरा मेरा मेरा मेरा मेरा मेरा मेरा मेरा मेरा मेरा मेरा मेरा मेरा मेरा मेरा मेरा मेरा मेरा मेरा मेरा मेरा मेरा मेरा मेरा मेरा मेरा मेरा मेरा मेरा मेरा मेरा मेरा मेरा मेरा मेरा मेरा मेरा मेरा मेरा मेरा मेरा मेरा मेरा मेरा मेरा मेरा मेरा मेरा मेरा मेरा मेरा मेरा मेरा मेरा मेरा मेरा मेरा मेरा मेरा मेरा मेरा मेरा मेरा मेरा मेरा मेरा मेरा मेरा मेरा मेरा मेरा मेरा मेरा मेरा मे